बम भोले भोले बम बम बम बम भोले भोले बम बम बम बम भोले भोले बम बम बम बम जय हो वैद्यनाथ भंडारी तेरी मई मारे नारी सखी नैया तुझे तारी तुझे माने दुनिया सारी भोले बम बम बम बम भोले भोले बम बम बम बम।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है, वो
2: वो क्या?
0: ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
4: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
4: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
4: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
5: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
4: तो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
6: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
7: अच्छा?
6: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
7: बाप रे,

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम। ए गर्ल, हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

0: सिर्फ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

कान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे।

0: मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार जहां चार यार जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार जहां चार यार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

के बोली जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।

चल रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

झाने जाने को कुछ दारी दाखू तारी कटे।

الله الله الله الله.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बरसों बाद लौट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

सत्यकाल राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज स्टार ओल्ड इज गोल्ड का ये प्यारा प्रोग्राम। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले जन्मदिन वाला गाना क्यों प्ले किया है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि आज हम सबकी प्यारी आरजे आकांक्षा जी का जन्मदिन है। तो आरजे आकांक्षा जी जन्मदिन की ढेरों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और ईश्वर करे आपकी जिंदगी का हर एक दिन आपकी मुस्कान की तरह खूबसूरत हो, हर सपना पूरा हो और खुशियां हमेशा आपके साथ रहे। आप यूं ही मुस्कुराती रहें और अपनी प्यारी सी आवाज़ से इस सबको दिल में वो खुशियां बिखरती रहें। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जियो हजारों साल और आपकी सारी तमाम ख्वाहिशातें वो पूरी हो जाएं। सबसे पहले मेरे पसंद के आप गाने इंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे, बिल्कुल दीवाना बना ही देता है रेडियो हॉटस्टार। और सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं आपका भी मिसाल अंगद जी, वेलकम करते हैं मिसाल अंगद जी। और हमारे सैयद यूनो जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी, वेलकम है आपका जी। और आरिफ सिंधी जी के साथ साथ मुबारक हुसैन जी, वेलकम है भाई। मुबारक हुसैन जी आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है। जाकिर खान जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राय बोले जी आपका भी। और सर्वजीत शेट्टी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत शेट्टी जी फाजिलका पंजाब से। और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं आपका। सर्वेश भगत जी, सर्वेश भगत जी कुछ कहते हैं, पहले इनकी सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी।
1: आज आकांक्षा जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और खूब खुश रहें, आवाज रहें, और हम लोग का मन बहलाते रहें।
0: बिल्कुल।
1: और अपने बाप माँ का नाम रोशन करें और खूब हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए। और अशिल्पा बहन जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है आपका भी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रेम सिंह साहू जी जुड़ चुके हैं, ये भी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
2: गुड इवनिंग आरजे देव सर।
0: अरे अरे हम अमन हैं जी, कहा गलत एड्रेस पे आपने भेज दिया है, जरा सा सही से भेजिएगा। ओके। और हमारे दिगंबर जी क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। तो हम भी जुड़ चुके हैं आपके रेडियो हॉट स्टार ओल्ड इज गोल्ड में
0: जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और शाहनवाज खान सर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि खातून की खिदमत में सलाम, अपन का बहुत बेहतरीन सॉन्ग, लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। और ग्रुप में यानी कि लाइव चैट में देखते हैं तो कौन कौन है वहाँ पे, यानी कि प्रियंका जी हैं और कायनात जी हैं और विभूति भूषण शरण जी भी जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और आप लाइव चैट का मजा लेते रहें। फिलहाल हम गाने सुनवा रहे हैं, सबसे पहले अजय भगत जी का। अजय भगत जी आज सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ ये बहुत ही प्यारा गाना, अमर अकबर एंथोनी का टाइटल ट्रैक।

0: बिल्कुल अमर अकबर एंथोनी और बहुत सारे फीडबैक भी हमें मेरे पास सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं।
1: जय अमर सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रेम सिंह साहू जी क्या कहते हैं।
2: हेलो अमन सर, गुड इवनिंग। आरजे हकान जी का हैप्पी बर्थडे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रेम सिंह साहू जी शाबरदान यूपी से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और संजय पटेल जी लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड, लाजवाब सॉन्ग। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना था, मजा आ गया सुन के। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अजय भगत जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमर सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात का अगला जो गाना है मीना इब्राहिम जी का ही मैं प्ले करने वाला हूँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।

0: बिल्कुल, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, और ये फीडबैक भी है, सुनते हैं।
1: अजय अम्मा सर जी, मीना इमरान जी अपने गाने में शामिल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी, और गजानंद जी सुलकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। देखते हैं अमर अकबर धोनी और मीना इमरान जी का गाना फिल्म इन गाइड का लाजवाब गाना सुनने को मिला है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। साथ ही साथ मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच है, और दोस्तों का भी धन्यवाद है। और प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चले यहाँ चल रहा है। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शाहनवाज खान साहब जी लिखते हैं कि गाइड फिल्म का सुपर सुपर हिट सॉन्ग लाजवाब फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुनते हैं।
2: हेलो सर, गुड इवनिंग, आज आकांक्षा जी का बर्थडे है, इसके लिए उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, उनके जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो आपने सॉन्ग सुनाया है गाइड मूवी का, वहीदा रहमान जी पे है जो सॉन्ग, उसकी दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।

0: आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। थैंक यू सो मच इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए, और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट मैंने भी भेजी है।
1: अगला आप ही का है, टेंशन मत लीजिए। और संतोष कुमार लिखते हैं कि चेहरे की मुस्कान यूं ही बरकरार रखना, दिल में अपने थोड़ा सा प्यार रखना, और जिंदगी तो आती जाती रहेगी, बस अपनों के साथ हमेशा बरकरार रखना। हैप्पी बर्थडे डियर आरजे आकांक्षा जी, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, हम भी जुड़ चुके हैं आपका रेडियो हॉट स्टार ओल्ड इज गोल्ड में, जरा नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा।
1: अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखती हैं कि सुपर डुपर हिट सॉन्ग है जी। तो अगला जो डिमांड है ये प्रियंका जी का, सुनना चाहती हैं नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त याद आने लगे।

0: सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। और ये फीडबैक भी आ गया है भाई, सुनते हैं।
1: जय मां सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी के पसंद, सुपर हिट लाजवाब लगी है और मजा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए उनको। और अजय भगत जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं?
2: अमन सर जी, एक सॉन्ग मैंने भी डाला है,
0: आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और लिखते हैं कि आरजे आकांक्षा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, ओके जी। और गजानन सलोकार जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी के पसंद, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे। मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज़ में सिंदूर फिल्म का बहुत ही शानदार गाना, मज़ा आ गया है। और डेनमार्क से जुड़ चुके हैं हमारे ये नेकलस जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, गुड इवनिंग सर। और शिल्पा बेन लिखती है कि वक्त बेवक्त बहुत ही प्यारा गाना है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। और संतोष कुमार जी लिखते हैं कि जन्मदिन को ढोड़ो शुभकामनाएं और खुशियों से भरा रहे आपका हर दिन, और चेहरे पर बनी रहे ये प्यारी सी मुस्कान, और हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए और यूं ही रोशन रहे जिंदगी का अरमान, बहुत बहुत मुबारक हो आरजे आकांक्षा जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वह क्या सॉन्ग है, दिल खुश हो गया है। और मीना जी लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे आरजे आकांक्षा जी, और लिखते हैं विशिंग यू हैप्पीनेस लव एंड ऑल द ब्यूटीफुल डाइवर्स, ओके। इसी बात पर अगला जो डिमांड है काजल झक्का जी का है, काजल झक्का जी क्या सुनवाना चाहती हैं, सुन लेते हैं ना।
3: पैगाम तो एक बहाना था, इरादा तो आपको याद दिलाना था।
0: अच्छा।
3: पैगाम तो एक बहाना था, इरादा तो आपको याद दिलाना था। आप याद करे या ना करे कोई बात नहीं,
0: अच्छा।
3: पर आपकी याद मुझे बहुत आती है ये बताना था, नमस्ते गुड इवनिंग आपको, रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को नमस्ते गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे रही हूँ। और ये सॉन्ग मैं सुना दूँगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, आपको, अवंशिका जी को, जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूँगी।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: है ना।
1: चले आना,
0: कोशिश करेंगे।

0: नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: और
2: ये क्या कहते हैं, इनके भी सुन ही लेते हैं। और यहाँ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झका जी की डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है और शामिल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
3: सर थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए। और पहले ये मैंने सॉन्ग सुना है कंप्लीट, क्योंकि मुझे ये सॉन्ग गाना भी था। अच्छा। तो अब मैं ये सॉन्ग आपको गा के सुनाऊंगी। और ये सॉन्ग मेरे प्रेम पुजारी जी के लिए है। अच्छा।

0: गाने लगे। थैंक यू सो मच,
1: वेलकम जी। और आप चलिए, एक आप ही की तरह गाती थी वो शिखा मिश्रा जी, वो गायब हुई तो आप आ गई, अच्छा हुआ। और यहाँ निकला जी लिखते हैं कि वेरी गुड इवनिंग आर्जे अमन जी, एंड हाउ आर यू, एंड आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू, प्लीज टेल मी। एंड यहाँ पे एमडी फैज जी लिखते हैं कि सुपर बेस्ट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ क्या बात है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। दिगंबर जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: हेलो, क्या बात है अमन सर जी, क्या सुपर सॉन्ग काजल झक्का जी का।
1: जी जी जी,
2: सुपर सॉन्ग, आनंद ही आ गया, ये है सॉन्ग, आनंद आ गया सॉन्ग सुनने।
1: जी जी बिल्कुल,
2: सुपर फास्ट सॉन्ग
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। और संतोष कुमार लिखते हैं कि हम ये सॉन्ग चाय पीते पीते सुन रहे हैं, वो तो वहाँ पहुँचिए ना जहाँ पे बुलाया जा रहा है चाय के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब एंड बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी के पसंद, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए इनकी मम्मी ने उनको चाय पे बुलाया है। जी बिल्कुल, मज़ा आ गया इस गाने को सुनकर। और जाकिर खान लिखते हैं कि तेरी मुस्कान में मेरी खुशी बसती है, लिखते हैं कि तेरी मुस्कान में मेरी खुशी बसती है और तेरी बातों में मेरी दुनिया सहती है, और तू साथ रहे तो हर पल खास लगता है, कि तू साथ रहे तो हर पल खास लगता है और तेरे बिना यह दिल थोड़ा उदास लगता है। और विष्णु चंद्र जी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी विष्णु चंद्र जी। और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: अमन भाई नमस्कार, हम इस समय यूपी में है,
1: अच्छा
3: आपका प्रोग्राम सुन रहा है,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत वेलकम है। और अजय भगत जी लिखते हैं काजल जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है। और ओके, और यहाँ पे पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, और हाँ यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे आरजे आकांक्षा जी। और बबीता जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड दिगंबर जी का सुनवाता हूँ, दिगंबर जी इंजॉय कीजिए।
4: आप माँ को समझाइए ना, वो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही। देवी माँ के मंदिर में माला पड़ने की बात तो उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके प्यार का आपने उनसे जिक्र किया था।
5: यकीन हुआ नहीं, यकीन दिलाया गया है, अब तो साफ जाहिर होने लगा है तुम किसी चक्कर में हो।
4: हाँ हाँ, मैं आपको फंसा रही हूँ।
5: ये मैं नहीं जानता, लेकिन देवी के मंदिर में आपने माला जानबूझकर ताक कर मेरे गले में डाली थी।
1: Oh my God.
5: मैंने अपनी आंखों से देखा है।
4: फूलों की माला कोई बंदूक की गोली नहीं है जो छूटी और लग गई। आंखों से देख रहे थे माला आपके गले में आ रही है, जरा खिसक गए होते।

0: ओके थानेदार जो टाइम है और ये फिर बैठ लेते हैं।
1: अमन भाई नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: बहुत ही सुंदर गाना सुनवा रहे हैं आप, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और जो भाई की पसंद है उनको भी धन्यवाद।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि शायद मेरी शादी का ख्याल ये सॉन्ग और छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, दोनों की डिमांड बहुत ही थे बहुत बेहतरीन, सुपर सुपर सुपर हिट। एंड यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही शानदार गाना है, मजा आ गया सुन के। और निर्मल राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं निर्मल राय जी। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि जबरदस्त सॉन्ग है जी बिल्कुल। और मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: हेलो सर, जो अभी आपने सॉन्ग सुनाया था वो बहुत ही अच्छा लगा।

0: वेलकम जी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि दिगंबर जी के पसंद चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, मजा आ गया। लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना था। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिगंबर जी की पसंद लाजवाब बेहतरीन, मजा आ गया। थैंक यू दिगंबर जी। और काजल झक्का जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: एक दूसरे से मोहब्बत कुछ ऐसी हो गई है, हाँ। एक दूसरे से मोहब्बत कुछ ऐसी हो गई है, दिल तो दो है, दिल तो दो है, मगर धड़कन एक हो गई है, मगर धड़कन एक हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी, गाना बजाते निकलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ऐसे भी दोस्तों को भी इतना अच्छा अच्छा फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। और जी हाँ, मिठू मियाँ जी को मेरे पापा बुलाए, वो भी घर पर नहीं, कॉफ़ी पीने के लिए कहीं और दूसरी जगह। तो मिठू मियाँ जी सुन गए हैं तो तैयार हो जाइए, आना है चाय पीने नहीं, कॉफ़ी पीने।
0: अच्छा जी,
1: थैंक यू सभी दोस्तों को। और आज मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ, थैंक यू अमन जी, थैंक यू गाना बजा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद, सॉरी धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से, आज का प्रोग्राम बोले तो झक्का।
0: ओके जी। और मेरे पास और भी फीडबैक है, जरा सा मैं देखता हूँ। यहाँ पे संतोष कुमार जी लिखते हैं कि सॉन्ग योर सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड इसलिए है कि मतलब क्योंकि आजकल के तो थानेदार ही अब खुद ही समय रहे ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: ओह माय गॉड, आई नो यू आर गुड सिंगर, प्लीज अदर पीपल आर वेटिंग फॉर देयर सॉन्ग, कम ऑन।
0: ओके, मैं समझ गया, ये मतलब फीडबैक यानी प्रियंका जी के लिए था क्योंकि वो अच्छा गाना गा रही हैं इसीलिए इनको ये पसंद आया, ये फीडबैक।
3: अमन सर जी, दिल खुश कर दिया आपने, हमारा सॉन्ग प्ले किया, आनंद भी आ गया, वो भी डायलॉग समेत।
0: अच्छा,
3: सुनकर आनंद भी आ गया सॉन्ग को।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे आर के रवि जी, लिखते हैं कि सूरज ढल गया है और चांद मुस्कुराने लगा है, ये ढलती हुई शाम का मंजर आपकी याद दिलाने लगा है। अमन जी शुभ संध्या, और सभी दोस्तों को भी शुभ संध्या, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ, नीलेश बीरोकार जी का, सुना चाहते हैं सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया।

0: बिल्कुल इन्हीं के कांटों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। और फीडबैक बहुत आ रहा है, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा फीडबैक। तो सबसे पहले ये सर्विस भगत जी क्या कहते हैं,
1: हरदेव मनसा जी, नीलेश वीरो कार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी, और संतोष गौंडी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि नमस्कार मनसा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, और आरजे आकांक्षा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जी हजारों साल। और काली चरण मास्टर क्या कहते हैं,
2: नमस्कार अमन सर जी, एक गाना जिस भाई का भी पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और आपको भी धन्यवाद।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काली चरण मास्टर जी। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि ये सांसों से नहीं और कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। नीलेश विरकार जी, बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नीलेश विरकार जी की पसंद सुपर चॉइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड हमारी कुंता बेनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दिल्ली से। और रॉय पर्वत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और गजानन सरकार जी लिखते हैं कि दोस्त नीलेश विरकार जी के पसंद सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, सुनकर मजा आ गया है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। और अजय भगत जी लिखते हैं कि मोहब्बत वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम एक लाख की बात कहा आपने, मोहब्बत वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, मोहब्बत वो है जो एक दिल में बह जाए, और फिर चाहे दुनिया और चाहे दुनिया कितनी भी हो। जी बस मैं ये कहता हूँ कि मतलब यानी कि हर कोई मन खूबसूरत नहीं लगता है, हर कोई सुंदर नहीं लगता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है वो सुंदर लगने लगता है, वो खूबसूरत लगने लगता है ना, क्योंकि आपका आपको उसका दिल खूबसूरत वो लगने लगता है, ऐसा इसलिए होता है। ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर जी, क्या बात है, ये भी सॉन्ग एकदम सुपर झकास, नंबर वन पर चल रहा है। क्योंकि पुराने पुराने दिनों की याद आ जाती है ऐसे सॉन्गों में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया।
3: दोस्त की फरमाश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनके भी।
4: आरजे अमन सर जी नमस्कार, मैं कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूँ, और अभी काफी बढ़िया गाना चल रहा है, सांसों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक्चुअली बात सही भी है, सांस रहे ना रहे लेकिन अगर मोहब्बत रहती है तो दुनिया बरसों बरसों तक याद करती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और निकला जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। निकला जी आपकी आवाज इस ऑडियो में नहीं आ रही है, शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, देख लीजिएगा। और अशिल्पा बहन लिखते हैं कि मोहब्बत से चलती है दुनिया, बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और जितेंद्र गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अगला गाना आर एस

0: बिल्कुल, मैं प्यार की पुजारी और मुझे प्यार चाहिए। और बहुत सारे फीडबैक भी आ गया है। क्या कहते हैं निकला जी, सुनते हैं एक बार फिर से। इनकी आवाज नहीं आ रही, इनके ऑडियो में आवाज नहीं आ रही, शायद रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आई एम सॉरी निकला जी। ये फीडबैक सुनते हैं।
1: शुक्रिया अमन सर जी, मेरा गाना प्ले करके मुझे सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार अमन सर जी के साथ।
0: धन्यवाद, जो दीवाना बना दे, है ना। और अमीना जी लिखते वाओ, बहुत खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं आरिफ सिंधी जी के पसंद, मोहम्मद अजीज और सपना मुखर्जी की आवाज में हत्या फिल्म का शानदार गाना, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं इनको। और रॉय पर्वती जी लिखते हैं कि तुम्हें बोने का गम तो बहुत है मगर अब शिकायत भी नहीं करते और तुम खुश रहो किसी और के साथ, हम यही दुआ हर रोज करते हैं, क्या बात है। और दिगंबर जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन ही लेते हैं, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है ना, बहुत सोलो काम करता है ना।
2: मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए।
0: अच्छा।
2: मैं हूँ प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। क्या सुपर सॉन्ग अमन सर जी, आज तो झका सॉन्ग चला रहे हैं आप, ढूंढ ढूंढ के दोस्त एक से बढ़कर एक फरमाश ला रहे हैं। धन्यवाद सॉन्ग सुनवाने के लिए।
0: ओके जी, और सभी दोस्त अच्छे अच्छे गाने की डिमांड किए, इसलिए तो सभी दोस्तों गाने अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं। और बाबूलाल अंजानी से गाने सुनी जी का डिमांड बहुत प्यारा है, लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और बबीता जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने गाने में शामिल करके डेडिकेट करने के लिए, आपका प्रोग्राम शानदार चल रहा है, मजा आ रहा है। और ओके, और धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे रवि जी लिखते हैं कि

0: आवाज
1: बहुत सुनो आ रही है भाई। निशांत राय बोले जी,
0: आकांक्षा को हैप्पी बर्थडे।
1: अच्छा,
0: मैं निशांत राय बोले कोकरडा अंजनगांव सूरजी।
1: ओके, धन्यवाद इस बर्थडे विश करने के लिए। मोहन वाले जी लिखते हैं कि मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं। और निर्मल राय जी लिखते हैं कि मैं मेरे प्यार की हद ना पूछो। अमन जी, हम खाना छोड़ सकते हैं आपका प्रोग्राम सुना नहीं। माय गॉड। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोप जी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ विष्णु चंद्र जी का। और विष्णु चंद्र जी सुनना चाहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे।

0: बिल्कुल, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे, एग्जांपल है मतलब। और नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, विष्णु चंद जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जी, थैंक यू
0: जी, वेलकम है आपका भी। और अशिपा पे लिखते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, बहुत ही बढ़िया गाना है, मजा आ गया सुन के। और शाहनवाज खान सर जी लिखते हैं कि ये कुर्बानी का सुपर हिट सॉन्ग, लाजवाब बेहतरीन फरमाइश के लिए बहुत शुक्रिया, मजा आ गया सुन के। और दिगंबर जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: वाह वाह वाह, क्या बात है अमन सर जी, वाह, ऐसे सॉन्गों में दिल लगता है सुनने में, रेडियो बहुत अच्छा, अनसुने से गाने आते हैं तो दिल गजब से लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
2: और जो रोज के से चलते हैं, जो सुने सुनाए सॉन्ग चलते हैं, जो उनमें थोड़ा दिल कम लगता है।
0: अच्छा,
2: एक से बढ़कर एक सुपर, आज तो सभी दोस्तों के सॉन्ग सुपर
0: जी, जी,
2: आ रहे हैं।
0: धन्यवाद।
2: और आप भी अच्छे अच्छे सॉन्ग लाए हैं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, गाना बहुत ही लाजवाब है। और गजानन सुलकार जी लिखते हैं कि विष्णु चंद्र जी की पसंद, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, बहुत ही प्यारा गाना, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे,

0: ऐसे अमन सर
1: जी,
0: सभी सॉन्ग सुपर हिट है मगर ये सॉन्ग मुझे बेहद खूबसूरत लगा
1: जी। अगला भी सुनिएगा तो खूबसूरत लगेगा आपको, मुझे पता है। और मीना जी हैं बहुत खूबसूरत गाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं अनिल जी।

0: सुपर से भी ऊपर का पसंद है ये। जिन भैया का ये पसंदीदा सॉन्ग है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
1: यह विष्णु चंद्र जी की पसंद थी और मोहन वाले लिखते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे एक नंबर गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुनकर। राय पर्वत लिखते हैं कि खुश रहो ऐसे कि गम भी लज्जित हो जाए, लिखते हैं कि खुश रहो ऐसे कि गम भी लज्जित हो जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि हर दिल दीवाना हो जाए, और जिंदगी मिले तो तुम्हें इतनी खूबसूरत कि हर सुबह एक नई कहानी बन जाए। वाह क्या बात है राय पर्वत जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मजा आ गया, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन सा जी बिल्कुल तारीफ के काबिल है, दोस्त ओल्ड इज गोल्ड ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, एकदम यानी कि 24 कैरेट गोल्ड वाला गाना है जी। धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।

0: बहुत ही अच्छा ये गाना है, काफ़ी अच्छा ये गाना है, और ये गाना बजे तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। आता तो नहीं मुझे गाना, गाने तो नहीं आता, भंगई मैं शायरी कर दूँगी, गाना गाने नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी आता है मुझसे रहा नहीं जाता है। ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है, थैंक यू गाना जो फरमाइश किए उन दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है।
1: थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुनकर सच में। और कुंता बनी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है जी, धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र गोस्वामी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।

0: आपने बहुत अच्छा गाया है।
1: थैंक यू बहुत बढ़िया गाना था ये, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी आपका भी। और आमना खान जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है, लग गया जैसे नीचे बनारसी पान की तरह। जी ओके, आपका नाम देने में माहिर है। और ओके, और यहाँ पे यानी कि ओम ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों को नमस्ते कह रहे हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दिगंबर जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज, वाह वाह वाह वाह, उनका कहना अच्छा लग रहा है। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो पूजा भास्कर जी का है, सुनना चाहती हैं। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। जी मैं भी यही कहना चाहता हूँ अपनी संध्याता की मुरत जी से।

0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, इतनी बस इतनी कि तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म हो जाए। और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। यहाँ पे राय पर्वत जी लिखते हैं कि ये काजल झक्का जी के पसंद, उनकी आवाज ही बहुत ही बढ़िया है और उन्होंने बहुत अच्छा गाया है जी, बिल्कुल। और जितेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस भाई का भी पसंद है उसको भी धन्यवाद।
0: ये आपकी बहन जी का पसंद था। ओके, और साथ ही साथ ये फीडबैक।
2: और जय अमन सर जी, पूजा भास्कर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: थैंक यू आपका भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: अमन बोल
0: बोल बोले।
3: अमन अंकल जी आप बढ़िया बढ़िया गाना सुनाते हो, हमारे पापा नाचने लग जाता है।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ओके, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: हेलो सर, सॉन्ग बहुत अच्छा था, मैं भी गाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, और इसी बात पर अगला फीडबैक भी है मेरे पास। यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि सभी गाने तो बहुत ही प्यारे प्यारे और मनमोहक लग रहे हैं, और आरजे आकांक्षा जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा उनसे एक सवाल भी है, जब जन्मदिन पर अपने रिश्तेदार और दोस्त के अलावा जब यह बधाइयाँ पूरे देश से आती है तो ये कैसा अनुभव प्राप्त होता है? जी जब उनका प्रोग्राम आएगा रात के 10 बजे, आप उनसे ये सवाल कीजिएगा। ओके, और चैट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, क्योंकि वो चैट बॉक्स के मैसेज को शामिल कर पाती हैं इसीलिए। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से कसम, और ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी यानी वाइफ अश्वनी जी को। ओके, और उनको भी बहुत प्यारा लगा ये गाना। ओके जी, और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बहुत बहुत बहुत बढ़िया गाना है, मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी के पसंद सुपर सुपर सुपर हिट लगी है। साथ ही साथ हुकुमचंद जी लिखते हैं कि अमन सा जी प्रोग्राम सुपर हिट लग रहा है, मजा आ रहा है, सभी भाइयों के पसंद बहुत अच्छी अच्छी चल रही है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन सा जी हमारा नेट स्लो चल रहा है इसीलिए कमेंट करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सुन रहे हैं ना, वही बहुत है। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे कुंता बेनी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच पूजा भास्कर जी, इतना बेहतरीन गाना सुनवाया आपने, दिल खुश कर दिया आपने। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड ऑसम है। साथ ही साथ नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। और शाहनवाज खान सर जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी के पसंद फिल्म वारिस का सुपर सुपर सुपर हिट लाजवाब सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, वारिस फिल्म का लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच पूजा भास्कर जी। और आमना खान जी लिखते हैं कि शाम की चाय यानी कि सुना इसीलिए मैसेज मतलब यानी कि करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी यहाँ पे काम भी करना पड़ता है और मैसेज भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, मैसेज मत कीजिए, आप प्रोग्राम को सुनते रहिए, वही बहुत है। और अगला जो डिमांड है मैं सुनवाना चाहता हूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ, जितेंद्र गोस्वामी जी के पसंद, इंजॉय कीजिए जितेंद्र गोस्वामी जी।

0: मेरे पास तुझे देखता रहूं, बस जी भर के देखता रहूं और फीडबैक भी सुनवाता हूं।
1: अमन सर जी, मैं शिवानी कुमारी, आप मेरे पापा का सॉन्ग ले ले करो, हमारा पापा नाराज हो जाता है।
2: कभी कभी लेते हो।
0: अच्छा ओके, मैं क्या करूँ, इतनी सारी डिमांड होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, और सबकी पसंद को पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हर किसी का तो प्रोग्राम, मतलब यानी कि प्रोग्राम में सॉन्ग तो छूटना ही छूटना है। अब आप ही बताओ, मैं अगर रात भर भी प्रोग्राम करूँगा तभी भी लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो सकती है, इसीलिए तो छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम अमन बाबू है कि नहीं? ये फिर
3: माशा जितेंद्र गोस्वामी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: ओके, और यहाँ पे यानी कि किराए पर बच लेते हैं कि वो बोली तुम मेरे बिना नहीं, वो बोली कि तुम मेरे बिना रह सकते हो, हमने कहा बिल्कुल, वो बोली सच, हम बोले हाँ लेकिन वाईफाई के बिना नहीं। ओके जी, गजानन जी लिखते हैं कि जितेंद्र को समझ जी का पसंद, आ बैठ मेरे पास मुझे देखता रहूं, सुरेश वाडकर की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या गाना है, दिल खुश कर दिया भाई। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने लाजवाब हैं और गुनगुनाना यानी कि बन रहा है, अच्छा यानी कि बिना गुनगुनाए नहीं रहा जा रहा है, अच्छा ओके ठीक है। और संतोष गौड़ जी लिखते हैं कि अमन सर जी, अगर मैं यानी आज यानी कि सच कहूँ तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं जी, अगला गाना भी सुनिएगा वो भी अच्छा लगेगा आपको। और जिसे लेकर आई हैं शिल्पा बेन जी, ओके। और मोहन नेवारी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ, सुपर चॉइस, मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनवाने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे राजू सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राजू सिंह जी, लिखते हैं कि गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी, और प्रोग्राम शानदार चल रहा है, सुपर चल रहा है, और सभी दोस्तों की पसंद भी बहुत ही अच्छी है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। राजू सिंह मैं हूँ यानी कि चेन्नई से, थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका भी राजू सिंह जी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
4: अमन भैया, मैं जिस परिस्थिति में अभी बैठा हुआ हूँ अपने दुकान पे, तो ठीक उसी के अनुकूल ये गाना भी चल रहा है, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ, क्योंकि शाम का मौसम है और अभी कस्टमर्स भी उतने नहीं है, फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ अभी, और दुकान शायद मुझसे यही कह रहा है और मैं दुकान से कह रहा हूँ कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ।
0: क्या बात है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ, गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे निकुंता बहन जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, सुनकर मजा आ गया है। और ये फीडबैक सुन ही लेते हैं इसी बात पर।
5: अपनी बाहों में तुझको छुपा लूं,
6: थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था ये, मेरा गाना शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: ओके, इसी बात पर अगला जो गाना मैं यानी कि प्ले करने वाला हूँ वो शिल्पा बेन जी का है, और शिल्पा बेन जी सुनना चाहती हैं तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार की महफिल कुछ ऐसी सजती है, हर धुन दिल को छू कर चेहरे पर मुस्कान लाती है, और दूर होकर भी लगता है कि कोई अपना पास बैठा है। ये सिर्फ रेडियो नहीं, दिलों को जोड़ने वाली आवाज़ है। और यहाँ पे ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: जय अमान सर, जय शिल्पा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके जी। और यहाँ पे यानी शिल्पा भी लिखते हैं, थैंक यू सो मच मेरे लिए डिमांड को पूरी करने के लिए। साथ ही साथ प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये शिल्पा बहन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, लाजवाब लगी। आप बाबूलाल अंजाना लिखते हैं कि ये शिल्पा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, थैंक यू सो मच। और मीना इब्राहिम लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बेमिसाल गाना है, मजा आ गया मोहम्मद रफी की आवाज़ में। और प्रियंका जी लिखते हैं कि मोहम्मद रफी की आवाज़ में गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके जी। और नाइस सॉन्ग चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ कुत्ता मैंने लिखते हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच शिल्पा बहन जी, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल लिखते हैं कि वाह क्या लाइन है, ऑसम सॉन्ग इस गाने की। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, ये लिखते हैं कि मेरे सभी दोस्तों गाना बहुत ही प्यारा प्यारा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि शिल्पा बहन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, मजा आ गया मोहम्मद रफी की आवाज़ में गाना सुनकर, दिल खुश कर दिया है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं सर जी मेरा गाने को भाई आपका गाना जल्दी आने वाला था, मैं क्या करूं, बताइएगा जरूर अगर आप इन्हें सुन रहे हैं तो। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, और सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें।

0: बिल्कुल, ये दिल तुम बिन लगता नहीं। हम क्या करें, बोलो ना, हम क्या करें, बस तुम्हें ही याद करता है, मिस करता है हमेशा। और जितेंद्र जी लिखते हैं, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सर्वजीत भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजी अमन सर जी, सर्वजीत सेट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुनकर, सुपर चॉइस। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मेरे दोस्त सर्वजीत जी की पसंद लाजवाब है, बेहतरीन है। और क्या नाम है, निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त सर्वजीत सेठी जी की पसंद इज्जत फिल्म का शानदार गाना, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको। और मोहन भाई लिखते हैं कि अमन जी सुपर सॉन्ग है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, लाजवाब फरमाइश, रियल ओल्ड इज गोल्ड, गाना सुनकर मजा आ गया, बोले तो ओल्ड इज गोल्ड, जिंदाबाद।

0: वाह भाई क्या कहें हम। अगला गाना भी सुनिए, बहुत प्यारा है। राय परवत जी लिखते कि इश्क किया तो दर्द मिला, और दर्द मिला तो नींद उड़ गई, और नींद गई तो पढ़ाई गई। अब समझ में आया मतलब इससे बड़ी कोई भी बीमारी नहीं होती। ऐसा है क्या? काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सर्वजीत शेट्टी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगी है। और कुंता बेनी लिखते हैं कि सर्वजीत शेट्टी जी के पसंद सुपर लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और जितेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस बात पर एक गाना आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा, जब तक रहे तन्मय जी। हाँ ये गाना तो मुझे बहुत पसंद आता है जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे बीच में मौका मिलेगा तो मैं प्ले करूँगा, फिलहाल इस फीडबैक को प्ले करता हूँ।
1: ये दिल तुम बिन कहीं अच्छा लगता।

0: किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: निगाहों को झलक दे के छुप जाना नहीं अच्छा।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसा

0: जी बिल्कुल।
1: और इस गाने का जवाब मेरे पास है, जिसे हुकुम चंद जांगड़ जी लेके आए हुए हैं, यानी कि कोटा राजस्थान से। उनका गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, लेकिन शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, बहुत सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग है और हमारा दिल से रेडियो हॉट स्टार सुने बिना तो लगता ही नहीं है, आपका प्रोग्राम सुने बिना तो लगता ही नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा वैसे तो मेरा भी रेडियो हॉट स्टार के बिना लगता ही नहीं है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हुकुम चंद जांगड़ जी का है, वो मैं तो यही कहूँगा, ये मेरा जवाब है इस गाने का, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।

0: बिल्कुल तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। बहुत सारे फीडबैक दिया हुआ प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह हुकुम चंद जी आपकी डिमांड ऑसम लगा हुआ है, मजा आ गया सुनकर। संजय पटेल जी लिखते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, क्या गाना है, मजा आ गया सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये नागिन फिल्म का सुपरहिट पसंद, लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और दिलीप ये क्या नाम है इनका, दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी हमारा भी एक सुझाव है कि आपका प्रोग्राम 2 घंटे यानी सुबह 2 घंटे शाम कर सकते हो। अरे भाईजान सुनिए, अगर मेरे पास समय होता ना तो मैं सुबह जरूर प्रोग्राम करता, लेकिन क्या करूँ मुझे सुबह यानी कि 9 बजे स्कूल जाना पड़ता है ना, और मैं शाम को 4:30 बजे घर आता हूँ, घर से भागते भागते स्टूडियो आता हूँ यानी कि 5 बज जाता है, और यानी कि 5 बजे से वो लिस्ट बनाना पड़ता है तो 6 बज जाता है, 6 बजे प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ से अभी तो फिलहाल आरजे आकांक्षा जी आ गए हैं तो मुझे 9:30 बजे ख़त्म करना पड़ा है, नहीं तो मैं तो समझिए कि पूरा 10:30 बजे तक प्रोग्राम किया करता था, क्या करूँ। और ये लिखते हैं कि शाम को तो मतलब कि 8 से 10 और फिर सुबह 10 से 12 होगी तो अच्छा ओके, मैं क्या ही बताऊँ आपको, नहीं पॉसिबल है, आई एम सॉरी। और यहाँ पे निशान राय बोले जी लिखते हैं कि तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। गजानंद जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जी के पसंद बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और शिल्पा पे लिखते हैं कि तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। सर्वजीत शेट्टी जी क्या कहते हैं सुनकर,
1: अजय हम अमान सर जी हुकुम चंद जांगर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं अमन जी, और कोई हंसता है तो कोई रोता है, और लेकिन वो सबसे खुशी वही होता है जो शाम का आपका प्रोग्राम सुनता है। अच्छा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा है क्या ये फीडबैक।

0: थैंक यू इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड, मजा आ गया सुन के। और काजल सक्का जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और यहाँ पे आमना खान जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब। ओके जी, और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया इतना प्यारा सॉन्ग सुनकर। इसी बात अगला जो डिमांड है नीतूश यानी शरण जी का, और नीतू शरण जी इंजॉय कीजिए कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: बिल्कुल, यानी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अब आप पता बीच बीच में कहाँ जाता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन फीडबैक बहुत सारा आया हुआ है। निशांत राय बोले चलते हैं कि अमन जी हाँ आपका गाना आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और प्रमोद कमल लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और सर्वजीत सेठी जी के सुनते हैं।
1: अरजे अमान सर जी, नीतू जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे संजय पटेल लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर औसम पसंद है। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन सर जी यानी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मगर रेडियो हॉट स्टार नहीं होता इसमें, इतनी बड़ी प्रोग्राम कहाँ से सुनते हैं। अच्छा जी, और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: थैंक यू,
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे नीतू शरण जी लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीना जी लिखते हैं वाव वाव वाव क्या बात है, बहुत प्यारा डिमांड, थैंक यू सो मच। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड लाजवाब फरमाइश के लिए, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और ये प्रकाश जी क्या कहते हैं,
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। अमन सर मजा आ गया
1: जी, मुझे पता है। और ये गाना है और आप न गुनगुनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गोपाल परिदार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत अच्छा गाना लगा मुझे। शिल्पा बहन लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और सॉन्ग बहुत ही बढ़िया और सुपर एक्सीलेंट था, और मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है, ये महफिल यूं ही सजी रहे और गानों का यूं कारवा चलता रहे। जी बिल्कुल, अगला गाना भी सुनिएगा बहुत प्यारा है। और कुंता बहन लिखते हैं कि वाह वाह वाह सभी दोस्तों का डिमांड लाजवाब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो सिया जी का है, और सिया जी सुनना चाहती हैं ये गाना, एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। और निशांत राय बोले, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और प्रकाश जी लिखते हैं कि जी ये भी गाना बहुत ही खूबसूरत है। और संदीप पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ में हिस्से का पर जोर नहीं, सुपर सॉन्ग है, बेहद ही लाजवाब फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच। और अशोक बाबे लिखते हैं कि वाकई में इश्क में कोई जोर नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गाना है, मजा आ गया सुन के। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये क्या जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये सच कहती है दुनिया, इश्क पर जोर नहीं है, मजा आ गया सुन के। और सुरिंदर पाल इन भोला जी जुड़ चुके हैं पंजाब से, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सुजीत झा भागलपुर बिहार से सुनना चाहते हैं, इंजॉय कीजिए इनके गाने को।

0: अभी झा को और प्रमोद को लिख देंगे औसम एकदम लाजवाब चॉइस है। और शिल्पा बिल लिखती है कि बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर जैसे मैंने कहा अशोक पाल जी का डिमांड, काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार के नाम पे एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: हाय हाय।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ संध्या पटेल जी लिखते कि एक से बढ़कर गाने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आज के गाने सुन सुन के। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वाह काहे को बुलाए मुझे बालमा, प्यार के नाम से बहुत ही प्यारा गाना है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और ये सुंदर पाल यानी भोला जी लिखते हैं कि रोज जो रूठोगी ऐसे तो ये वाला गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि काहे को बुलाया मुझे बालमा, बहुत ही प्यारा गाना है। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या पसंद है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि पर्वत राय जी का है, सुनना चाहते हैं जाने दो मुझे जाना है, नहीं जाने दूंगा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। फिलहाल गाना सुनिए और इंजॉय करते रहे और सुनते रहे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई यानी कि पर्वत राय जी के पसंद शहंशाह फिल्म का शानदार लगा है, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको। और सुनील कुमार जी बाका बिहार से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि प्रोग्राम मस्त चल रहा है। और यहाँ पे पूजा भास्कर लिखते हैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि जाने तो मुझे जाना है, गाना सुनकर मजा आ गया। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाने तो मुझे जाना है, गाना मुझे बहुत ही पसंद है, शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। संध्या पटेल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, मजा आ गया सुन के। और आमना खान जी लिखते हैं कि गाना ये भी बहुत ही प्यारा है। और अमीना जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अरे जाने दो मुझे जाना है,
0: कहाँ
1: वादा जो किया है वो निभाना है।
0: अच्छा।
1: आज किसी से मुलाकात है मेरी,
0: कौन है वो

0: थैंक यू, बहुत ही सुंदर सॉन्ग।
1: ओके, इसी बात पर अगला जो
0: बहुत ही बेस्ट।
1: ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, और आमना खान जी मानने वाली नहीं है, जाने ही वाली है। ओके जी, जा सकती है।

वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आए हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आमना खान जी का लाजवाब डिमांड मजा गया सुन के धन्यवाद देते हैं। और बबीता जी लिखते हैं कि मेरे भी गाने जी मैं कोशिश करूंगा बबीता जी। और आमना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि आमना जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आई, बिल्कुल धमाकेदार पसंद मजा गया। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। इसी बात पर दो दोस्तों की पसंद है और ये दो दोस्त हैं, एक हैं हमारे एमडी जलील जी और दूसरे हैं ये निशांत राय बोले जी। दोनों एक ही गाना सुनना चाहते हैं और वो गाना है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और निशांत राय बोले लिखते हैं कि मेरा गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच और गजानंद जी लिखते हैं कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं मोहम्मद रफी की आवाज में लाजवाब गाना बहुत अच्छा लगा है और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी और साथ ही साथ यहाँ पे बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है और कुंता बेनी जी लिखते हैं वाह बहुत ब्यूटीफुल वर्माई से सुनने को मिला मजा आ गया दोनों दोस्तों की को दिल से धन्यवाद देते हैं बेहतरीन गाना सुनवाने के लिए और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: गाना बहुत बढ़िया लगा भैया और आजकल का यही रीत हो गया है कि मतलब निकल जाने के बाद लोग नहीं पहचानते हैं पर क्या करिएगा जिंदगी है।
0: ओके तो भाई क्या करें इनको इनको चाहिए मतलब नौलखा उसके बाद ये मानने वाली हैं कोई बात नहीं इनको हम नौलखा पहना रहे हैं फिलहाल। ये गजानंद यानी के परिदार जी गाना सुनना चाहते हैं और इसके बाद से भी इनको मनाना पड़ेगा ना भाई एंजॉय कीजिए।

0: दीवानी।
1: वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी दोस्तों का। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आज दोपहर में एक गाना बजा था 2:45 पर, सुस्वागतम सुस्वागतम।

और निशांत राय लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है जी बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी के पसंद, गजानंद जी नहीं था भाई, ये किनका पसंद था जी, अब मुझे देखना पड़ेगा, ये गोपाल यानी परिदार जी का पसंद था, गोपाल परिदार जी, जी उनका था। गजानंद जी लिखते हैं कि मुझे नौलखा मंगा दे रहे शराबी का लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे यानी कि पूजा भास्कर जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत पसंद है, नीतू शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है जी बिल्कुल। और दिनेश यहाँ पे जुड़ चुके हैं, नाम है दिनेश कुमार राय जी, बहुत बहुत वेलकम है दिनेश कुमार राय जी, ये भी यानी कि किशनगंज बिहार से हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या गाना, अगला गाना रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप तहा।

बिल्कुल रेशमी सलवार कुर्ता जाली का मजा आएगा। निशान राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनील कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी को, आपको मेरा यानी कि कोटि कोटि नमस्कार है मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राजेश और गजानन सरकार जी लिखते हैं रेशमी सलवार कुर्ता जाली का गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नीतू शरण लिखते हैं कि रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये

0: ये तो गाना सुनकर यानी बीते दिनों की याद आ गई है। अगला गाना सुनिए, अनिल अनिल अनिल कश्यप जी की। अनिल कश्यप जी सुनना चाहते हैं मैं 16 बरस की।
1: तो मैं 17 बरस का।
2: 16
1: 17
2: 17
1: 16

0: बिल्कुल, यानी कि तू 16 बरस की तो मैं 17 बरस का, क्या फर्क पड़ता है, एक साल का तो डिफरेंस है। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि दिन की भाग दौड़ से हो गए परेशान और सर में हो रहा है दर्द, तो रेडियो हॉट स्टार लगाइए और चुटकियों में सर दर्द भगाइए। वाह क्या बात है, कहाँ कहाँ से लाते हैं भाई भाई दीपक कुमार गायकवाड़ जी, सच में दिल खुश कर देते हैं आप। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए। निशांत राय बोले लिखते हैं कि ये भी गाना मेरा फेवरेट है, धन्यवाद देते हैं। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस है। और ये क्या कहते हैं,
1: जब तक रहे तन में जिया आरजे सर मेरा सॉन्ग लगा दीजिए।
0: ओ माय गॉड, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ आपके गाने को सुनवाने के लिए, एंजॉय कीजिए।
2: जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में,
0: तो इस गाने के बाद मेरा भी पसंदीदा सुन लीजिएगा।

0: बिल्कुल मेरे दिल ने जो मांगा वो मिल गया, बहुत सारे फीडबैक भी आ गया है मेरे पास। और यार राधा कृष्ण को जितने की बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सभी भाई अपने अपने गाने में साउंड करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और देखिए आप लोग का फिर अभी तक फरमाइश बाकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ शामिल करूँ। कोशिश करता हूँ कि शायण वैसे पहले आप लोग का फरमाइश मतलब शामिल कर दूँ। और यहाँ पे निशान राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आशा भोसले की आवाज़ में समाधि का गाना मुझे बहुत पसंद आया। और ये फीडबैक
2: मैं 16 बरस की,
0: तो मैं 17,
2: तू 17 बरस का, मिल जाए नैना एक दो बरस जरा दूर रहना,
0: अच्छा
2: कुछ हो गया तो फिर ना कहना।
3: और एक सॉन्ग ये भी बहुत अच्छा था,
0: कौन सा?
2: जब तक रहे,
0: अच्छा अच्छा

0: दोनों ही सॉन्ग बहुत ही प्यारे थे।
1: धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं नाम है ये निखिल कृष्णा पाल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी के, अमन सर जी क्या हमारे रिश्तेदार या दोस्त के बर्थडे को भी आप प्रोग्राम में विश करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। एक मैं बता दूँ स्पेशल चीज़ के, अगर अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट यानी करते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट कम से कम इन तीन दिन पहले किया जाता है। हमारे रेडियो हॉटस्टार के ऐप में जहाँ पे इन मोर बटन है, मोर में ही एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल रिक्वेस्ट। स्पेशल रिक्वेस्ट में आप इन बर्थडे विश हो या एनिवर्सरी विश हो, अगर वहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम यानी कि 25 गाने, अधिक भी गाने कर सकते हैं, यानी कि 50 गाने कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 100 गाने कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम यानी कि 25 गाने अगर आप मुझे भेजते हैं तो यानी कि सुबह 10 बजे से वो स्टार्ट होता है आपके लिए, आपके उस दिन बर्थडे के लिए जिनका बर्थडे होता है उनके लिए हम लोग ऑनवेयर, जब तक गाने उनके प्ले होते हैं वो तब तक उनको विश किया जाता है। हाँ तो बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सारा सुविधाएं उपलब्ध है, टेंशन मत लीजिए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, गाना मुझे बहुत पसंद आया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम डिमांड, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और अभिभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत बहुत धन्यवाद लाजवाब पसंद के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो राधा कृष्ण गोप जी का है, राधा कृष्ण गोप जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए।

0: बन फूल, बन का फूल। और निशांत राय बोले जी, नीचे का गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, राधा कृष्णा गोप जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि मैं बन फूल बहुत ही बढ़िया गाना लगा, मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना बजाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आवाज में जादू है, वाह मजा आ गया गाना सुन के। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ जाकिर खान जी का। और जाकिर खान जी, ये सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए तू बनी। अच्छा, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल मेरे लिए तू बने और तेरे लिए मैं बना हूँ। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे हो गए हैं और यहाँ सबसे सुंदर ये नेपाल जी लिखते हैं कि अमन जी ये सॉन्ग आप पर सूट करता है, जहाँ आप जाते हैं बाहर चली जाती है। अच्छा थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सर
0: जी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद बेहतरीन, लाजवाब लगे, मजा आ गया सुन के। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि ये गाना मस्त लगता है जी, बिल्कुल। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाह वाह वाह सुपर पसंद है जी, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है। साथ ही साथ राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही पसंद है ये गाना मुझे। और इसके बाद से अगला ये फीडबैक तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा यानी लंबा है मेरे पास अभी, यानी समय कम है, इसलिए यानी प्रियंका जी आपके फीडबैक को मैं नहीं शामिल कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। और अगला डिमांड मैं जल्दी से प्ले करता हूँ, जिसमें हमारे सर्वेश भगत जी हैं और अशोक देशमुख जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, दो दोस्तों का कम से कम ऑडियो शामिल कर लेता हूँ, अशोक देशमुख जी का और सर्वेश भगत जी का।
2: नमस्कार अमन सर। नमस्कार। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा और गाने का बोल है कांची रे प्रीत मेरी कांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके, और सर्वेश भगत जी का ऑडियो सुन लेता हूँ और आत्माराम जी भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सैयद यूनुस जी भी हैं।
3: अरजय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है हरे कृष्णा हरे रामा और गाने का बोल है कांची रे प्रीत तेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत भगत वर्षी स्वरूप भगत आनंद शेखर अंदर प्रकाश सोनी कुमारी मन कुमारी सुरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयद यूनुस जी आरजे अमनसर जी सुंदरता की मूरत जी आरजे आकांक्षा जी आरजे रत्ना जी आरजे एमएस परमार जी आरजे वंशिका जी और सभी आरजे और सभी आर भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में सामने सभी को सुना दी गया। जयराम जी की अमर।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आया है यहाँ पे जुड़ चुके हैं यानी मीना कुमारी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रियंका जी की प्लीज मेरा सुना दीजिए।
1: हेलो सर, सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, पर आज ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
0: क्या क्या?
1: गले में।
0: अच्छा,
1: तो सॉन्ग की आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है।
0: कोई बात नहीं,
1: गाने का तो बहुत कुछ मन है लेकिन
0: जी जी
1: गाया नहीं जा रहा है।
0: कोई बात नहीं,
1: पर अब रेडियो हॉटस्टार इतना अच्छा लगने लग गया है।
0: अच्छा,
1: कि बिना सुने रहा ही नहीं जाता।
0: ओह माय गॉड,
1: एक तरीके से रेडियो हॉटस्टार से प्यार सा हो गया है।
0: ओह माय गॉड,
1: पर आज थोड़ा तबीयत ना सही होने के कारण मैं शायद ऐसा लगा मुझे कि मैं गाने ढंग से नहीं गा पाई।
0: कोई बात,
1: लेकिन जो भी है जैसा भी है वैसा मैंने गाया, अपने दोस्तों को सुनाया, उसके लिए वेरी वेरी वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। एंड आप जो इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के चक्कर में आज थोड़ा कमी मेरे सॉन्ग में लगी।
0: अच्छा,
1: है
0: कोई बात नहीं।
1: लेकिन सभी गाने बहुत अच्छे थे। आप इसी तरीके से सबको अपना रेडियो हॉटस्टार सुनाते रहिए।
0: धन्यवाद देते हैं आपके फीडबैक के लिए। और जाकिर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, सुनाते हैं।
2: बचपन में अंताक्षरी के दौरान को अक्षर से गाना जब आता था तो इसी गाने के इंतजार रहता था। वैसे किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना काफी अच्छा है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। और हमको तो जब यानी कि कौ चाहता था तो कबूतर जा जा, मुझे यही याद आता था यार। अनिलेश वीरकार जी लिखते हैं कि अमन जी धन्यवाद, मेरे पसंद का गाना कुछ चलवाया आपने, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मैं थोड़ा लेट से फीडबैक दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। काजल जी लिखते हैं गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और कमलेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है अमन जी, और मैं अभी नया नया हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नए हैं तभी तो यानी पुराने होइएगा ना, और वैसे तो यानी कि पुराने लोग भाग जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी सभी के पसंद बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गौर लिखते हैं कि सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि यानी कि प्रियंका जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
3: जय अमन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा सभी भाई का फरमाइश आप अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके, और अगला जो डिमांड है हमारे शाहनवाज खान सर जी का है, और इन्होंने बहुत लंबा फहरिस्त रहता है, मतलब बहुत से दोस्तों का मतलब उन्होंने डेडिकेट किया रहता है, इसीलिए उनका ऑडियो मैं प्ले नहीं करूँगा, सीधे मैं गाना प्ले कर रहा हूँ उनका। और शाहनवाज खान जी एंजॉय कीजिए। और सभी को डेडिकेट है गाना।

0: एक काम करते हैं, फीडबैक तो मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं क्या ही बताऊं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और कमलेश चौधरी जी लिखते हैं कि आज मैं नया हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है आज पहली बार जुड़े हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका कमलेश। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, शहनवाज खान सर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सर।
0: वेलकम भी है आपका भी। और नीलेश विरोकार जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना, वो जब याद आए बहुत याद आए। एमडी जलील जी लिखते हैं कि नहीं, एक दिन में एक ही गाना प्ले होता है, दो नहीं प्ले होता है भाईजान, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत से दोस्तों कैसे ही छूट रहा है, मैं क्या करूं। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय शर्मा जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, वो जब याद आए बहुत याद आए, मजा आ गया सुन के। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह, वो जब याद आए बहुत याद आए, बहुत ही प्यारा गाना है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं, दिल खुश कर दिया भाई साहब ने। और यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद। और धर्मेंद्र मोहन जी का एक गाना है, वो भी वो भूली दास्तान, ओके, तो मैं ये गाना को सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए धर्मेंद्र मोहन।

0: बिल्कुल वो भूली दाशा और प्रियंका जी लिखते जो ओल्ड इज गोल्ड एक नंबर गाना लग रहा है मुझे, और राय पर्वत जी लिखते अमन जी कहाँ चलाते हैं ऐसे ऐसे गाने दोस्त जी बिल्कुल, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते अमन जी आप लाइफ में अगर कोई आपसे कुछ गलती हो जाती है आप मान लेते हैं कि आपने गलती किया जी भाई, गलती करे हुए तो मना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। धन्यवाद देते हैं आपको। और पूजा भास्कर जी लिखते कि मेरा फेवरेट गाना है वो भूली दाश्ता, और ये फीडबैक।
1: आरजे अमन सर जी, एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आज आपके होस्ट आरजे आकांक्षा जी का बर्थडे है, तो जब आप चाहिएगा उस टाइम एक लास्ट गाना बर्थडे स्पेशल प्ले करके जाइएगा, क्योंकि ये हम जितने लोग जुड़े हुए हैं ये हमारे सब लोग के तरफ से और आपके भी तरफ से उनके लिए एक तोहफा होगा, और जितने लोग अभी सुन रहे हैं अगर वो हमारी बात से सहमत हैं तो इस फीडबैक पे अपना भी रिस्पांस दें।
0: तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले उनके लिए बर्थडे सॉन्ग ही प्ले किया था, सबसे स्टार्टिंग में सबसे आते सबसे पहले मैंने बर्थडे सॉन्ग उनके लिए प्ले किया था, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक गाना में हमें तब से एक आखिरी गाना होगा जो मेरी पसंद का होगा, उम्मीद करते हैं वो मेरा फेवरेट गाना है, वो आप सबको अच्छा लगेगा, ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। गजानंद जी लिखते हैं कि वो भोली दास्ता गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर आर के रवि जी का गाना मैं प्ले करता हूँ, लिखिए जो खत तुझे जो तेरी याद में, एंजॉय कीजिए।
2: हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो

0: बिल्कुल वो फुल बन गया और बहुत सारे फीडबैक भी आ गए मेरे पास। और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहते सुन लेते हैं।
1: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में नजारे बने के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए और रात आई तो सितारे बन गए। थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, धन्यवाद देते हैं। और ओके धन्यवाद देते हैं आपको। और ये सुंदर पाल जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा मेरी भी पसंद का यही गाना था। ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपकी भी पसंद पूरी हो गई। और पर्वत राय लिखते हैं कि अमन जी आर के रवि जी ने खत लिखा दीवाना मस्ताना बना दिया जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आर के रवि जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये वाला पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं कि आर के रवि जी के पसंद लाजवाब है। और विष्णु चंद्र जी यहाँ पे लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना लगा है। इसी बात का अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, प्रमोद कुमार जी एंजॉय कीजिए।

0: और ये चलिए फिलहाल मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं और रवि मोहरे जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग आर के रवि जी का, मजा आ गया गाने में।
2: लिखे जो खत तुझे अच्छा। और तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे,
1: बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया।
0: ओके, और बता दूं कि आज जो यानी कि टॉप इन 10 हमारे वो लीडर बोर्ड में शो हो रहे हैं।
3: तुमसे मिलकर
0: बाद यानी कि प्रबोद कुमार जी, गजाना सलोकार जी, निशांत राय बोले जी और पूजा भास्कर जी, आमना खान जी और प्रियंका जी और सर्वेश भगत जी और जितेंद्र गोस्वामी जी और संजय पटेल जी। मैं लॉटरी निकालता हूँ जिनका भी नाम आएगा, मैं किसी एक को कॉल लगाऊंगा। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं आदरणीय दोस्त हमारे प्रबोद जी के पसंद, बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है, और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं

0: जी बहुत बहुत आपको बधाई हो। निशांत राय बोले जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बोलो।
0: आज के इन विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: थैंक यू सर।
0: जी
1: गाना है।
0: जी जी आप गाना बता दीजिए।
1: उससे नारा नहीं जिंदगी मेरा फेवरेट गाना है।
0: ओके जी, आपका गाना है, मैं जरूर प्ले करूंगा और एंजॉय कीजिए इस गाने को, ठीक है?
1: दोस्तों
0: ओके ओके, धन्यवाद देते हैं इसके लिए और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: के जी फीडबैक भी एक साथ आ चुका है, शामिल करता हूँ।
1: अमन जी, आपका प्रोग्राम सुन के मेरा रोम रोम खिल उठता है और हमेशा आपका प्रोग्राम का मैं इंतजार करते रहता हूँ।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि निशांत राय बोले जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है। इसी बात पर आप ही का गाना मैं प्ले कर देता हूँ, नीतू शरण जी, नहीं नहीं ये विभूति शरण जी का गाना। ओके जी, विभूति शरण जी एंजॉय कीजिए, किसी की मुस्कुराहट तो एंजॉय कीजिए। ओह माय गॉड, मैंने तो गलत गाना प्ले कर दिया है, ये गाना है हमारे नंदलाल जी का।
2: बहुत खूबसूरत है जी, मानता हूँ, मगर मैं तवायफ को पहचानता हूँ।
3: अरे जा,

0: है।
1: अल्लाह, और ये गाना जो अगला जो है मैं इन्हें प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे सुनील कोंडे जी का, सुनना चाहते हैं ये गाना।
2: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

पे निशान राय बोली लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था, मजा आ गया। जाके लिखते हैं कि भाई हमारे नंदलाल जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और नीतू सरन जी लिखते हैं कि जी हाँ बहुत ही बढ़िया पसंद है, मजा आ गया सुन के। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और अगला डिमांड है हमारे गजानन जी के ग्रुप का, और इसके बाद मेरा आखिरी गाना प्ले होगा मेरे पसंद का।

और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे 90s एंड न्यू स्पेशल में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। एंड आरजे आकांक्षा जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: बिगाड़ेगा ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना।

0: चंदनगढ़ यहां से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहां की राजनर्तकी थी और मैं यहां का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
1: नहीं।
0: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है, जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: मैं रत्ना
1: रत्ना रत्ना

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देना।
1: हे हे हे, अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आ गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाय देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: हाँ दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
1: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
2: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
3: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
4: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
5: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
2: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार। चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
6: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
2: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला ना चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर ना देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलिए।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना, और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े, और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरी तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।